तौ जेहियां मूं जेहियां कितियां जिन्हां ने गुणा नूं धारण कीता है से अंबी छावड़ी है जी उह तेरे वर्गियां ही हो गईयां तेरे विच समा गईयां तेरा रूप हो गईयां। महाराज कलगीधर पातशाह दे पावन दरबार च सिख आया सी वैराग विच आ गया जान लगा महाराज के दर से मत्था टेक के वैराग विच आ गया। साहब कह लगे क्यों गुरमुखा वैराग विच आ गया इथों गुरु नानक के दर तो सारे प्रसन्न चित जाते हैं तैनू की तकलीफ तेरे मन की कोई वेदन है तो दस। कह लगा महाराज वेदन तो कोई नहीं हुण तां एक बोझ जापद है। कह लगे की बोझ है। कह लगा महाराज पिछे मैं तुहाडे पास आया सा मेरे घर रोटी नहीं सी अन्न धन की कमी सी तुहाडे चरणां च चार दिन बिताए तुसां आशीष बख्शिश कीती घर विच अन्न धन की कोई कमी ना रही पर सदा मैनू यह ख्याल बनिया रहा कि गुरु की बख्शिश नाल अन्न धन आया मेरी चीज नहीं गुरु की वस्तु है ते फिर जिहड़ा बूहे ते आया मैं ना धन तो खाली जान दिता ना अन्न तो खाली जान दिता जिहड़ा सवाली जिहड़ा तंग जिहड़ा भुखा नंगा नजर आया तुहाडी बख्शी दात विचों मैं दोही हथी वंडदा रहा तुहाडी दात जान के ते महाराज अजीब गल यह है कि वह सारा कुछ वधदा ही रहा जिवें जिवें मैं वंडदा रहा तिवें तिवें वधदा रहा वस्त्र धन अन्न सारा कुछ मैं वंडदा रहा ते मेरा वधदा रहा। फिर एक बारी मैं आया आप जी दे दर ते मैं वेखिया मेरा मान कोई नहीं समाज विच मेरी इज्जत कोई नहीं मैं तुहाडे चरणा ते मत्था टेकिया मेरे मन की वेदन तुसा जानी मैनू सुचज बख्शिया तुसा मैनू कुछ प्यारे प्यारे उपदेश दिते मैं बुराइयां छड़ियां नेकी दे राह ते चलिया मैनू लोगों ने वाह वाह आखिया मेरा सत्कार लोगों ने की पर जिसले महाराज ऐतकी मैं तुहाडे चरणा ते आया मैं उदो भी महसूस करता सा कोई खला कोई कमी है जीवन विच वड़ियाइयां भी मिल गई पदार्थ भी मिल गए ऐतकी आया मैं तुहाडे चरणा विच बैठे गुरसिखां दे नेत्रां च मस्तियां वेखी मैं जने जने नूं पुछिया यह मस्तियां यह लोर यह आनंद तुहानूं किवें लभे है उन्हां कहा अमृत छक के बाणी दे लड़ लग के गुरु की रहत नूं धारण करके चढ़दियां कला सानूं प्राप्त होईयां। पातशाह मैं तुहाडे पंजां प्यारियां कोल तुहाडे बख्शियां कोलों मैं भी अमृत की दात प्राप्त कर ली। साहब कहण लगे फिर इहदे च खुशी की गल है कि विराग की गल है फिर तेरे नेत्रां च पाणी क्यों। कहण लगा महाराज यह नेत्रां दा जल इस करके है कि जदों अन्न मिलिया मैं अन्न वंडिया मैनू धन मिलिया मैं धन वंडिया मैनू वस्त्र मिले मैं वस्त्र वंडे मैनू वडियाइयां मिलिया मैं लोगों च माण पाया मैं लोगों का माण किया मैं सोचना यह आनंद का की बनेगा जिहड़ा तुहाडे दर तो मैं हुण लै चलिया जो धर्म मैं तुहाडे मार्ग तो तुहाडे दर तो हुण लै के चलिया जो मस्ती ते आनंद मैनू अज आया है इहदा करजा मैं किवें लावांगा। करजा तो मैं अगला भी नहीं ला सकता पर अगला तो सारा कुछ मैं वंडिया सी यह दात जो तुहाडे दर तो अज लैके चलिया इहदा करजा मैं किहड़े जन्म लावांगा। धन गुरु कलगीधर पातशाह हस पे कहण लगे गुरमुखा जो कुछ अगे मिलिया सी तू अगे वंडदा रहे जो कुछ हुण मिले है भी वंडी चल जो हुण मिलिया इस आनंद नूं भी कल्ला ना माणी ए भी वंड थां पर थां भुख दे मारे लोग दुख दे मारे लोग तैनूं मिलणगे उहनां नूं धर्म दे मार्ग ते तू के लाउणा तेरा अज तों कम होवेगा जिहड़ा आनंद तेरे हिरदे च आया इह आनंद दूजिआं च वंडिआ जा सकदा दूजिआं नाल सांझा कीता जा सकदा उह जिहड़ा आनंद आप लैंदा है दूजिआं नूं आनंद वंडदा है उह गुणवंता उह गुणवंती सुचज्जी वर्गा आनंद दा भरिया बंदा से अंबी छावड़िए जीओ उन्हां कोलों गुण लैणे या जे पले होण तो दूजिआं नूं गुण वंडणे इह सुहागण दी निशानी है दुहागण नूं मार्ग दा संकेत देना ते सुहागण कोलों मार्ग दा संकेत लैणा इह परस्पर सांझ है। साहिब कृपा कर

संभाले समनहा जिन करते करण किया चिंता भी करनी तहा सो करता चिंता करे जिन उपाय जग तिस जोहारी स्वस्थ स

हे शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

क्रोध दी अगन पड़क रही है। इना दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन पड़क रही है, जो इना नू मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावा, इस नाल मैनू भी कुछ प्रभाव पवे। पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारिया शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नू प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग चंगे होवन, जिन्हां दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ते हरी नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है। वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा है उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे ओ जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नू एक शांति दा उपदेश दित्ता है। ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकदी है जे नाम दा शीतल अमृत ओ सरोवर ओ सोमा

पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश होई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उन्हां दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, ओ भज गए ने मेरे कोलों।

दरबार विच बैठे साई मियां मीर आया, बेनती कीती गरीब निवाज, आपने जो ए बाणी रची है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आपने बाणी रची है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रवे, फिर भी उसके हुक्म विच रवे। ऐसा कौन है, कृपा करो। सिर्फ ए बाणी मुझ बाणी ही उचारी है कि इसके उपर कोई अमल करन वाला भी है। ता गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, साई मियां मीर समा आवेगा, ये जो अखर असी लिखे हैं, जो अखर उचारे हैं, इन्हां ते अमल भी करके दसांगे। ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते, ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या, इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है, ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वार सब तों अच्छा है। उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां। साहब जी ने कहा, अच्छा। जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है, तां चंदू दीवान जिसनू अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो, मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी, ए तुसी चंगा नहीं कीता। गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले बोल बोले ते एक गल संगत नू पता लग गई, ता दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी, गरीब निवाज इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना, क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं। ते जदों साहब जी ने मना कर दिता ता ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ये तो मेरी बड़ी बेदबी कीती है इन्होंने, गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता, इन्हों अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हाँ, ते मैं इन्हों दे नाल की कुछ कर सकता। तो फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ। अंतर जामी गुरु अर्जन देव पातशाह तो सब कुछ जानते सन, जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तो कुछ प्यार वाले नाल तुर पए। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की, गरीब निवाज किथे तुरे हो? आख्या, बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नू चले हैं, किसे जरूरी काम नू चले हैं। ता बाबा बुढ़ा जी ता ब्रह्म ज्ञानी सन, जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नू चले हैं साहब जी, ता की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे हुए। पुब्बां निकलियां बाबे बुढ़े दियां, तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा, बाबा जी ए राज राज ही रहन देना, खोलना नहीं। गरीब निवाज चले हो, एक वरां मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ, जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਭਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

कुछ दूरी तक साहब जी नाल गईयां, चारे पासे संगतां दी अखां विच आसू हन। साहब जी कहण लगे, बस सात संगत तुसी हुण इत्थों वापस चले जाओ ते साडे नाल कुछ प्यार वाले अगे जाणगे। ते जिस वक्त गुरु अर्जन देव पातशाह लाहौर पहुंचे तां चंदू दीवान जो अहंकार दे मद विच सी कि मैं राजे दा दीवान हाँ, बादशाह जहांगीर दा दीवान हाँ, पहले तां गुरु अर्जन देव जी नूं किया कि ए रिश्ता आप गुरु हरगोबिंद जी दा मेरी लड़की नाल कर दिओ तां मैं सारे सुख तुहानूं देंगा। तां गुरु अर्जन देव पातशाह कहण लगे, चंदू मैं संगत दा हुक्म मोड़ नहीं सकदा, संगत दा हुक्म है, साध संगत दा हुक्म है, ए रिश्ता तेरी लड़की दे नाल गुरु हरगोबिंद जी दा नहीं हो सकदा। तू सुख दे दुख दे ए तेरे हाथ नहीं, ए तां अकाल पुरख दा भाणा है। तां चंदू पापी ने अपनी हवेली विच जिथे तत्ती लो अंदर लाई हुई है, अग बल रही है तले, ऊपर तवा लाल होया पे, आख्या फिर जे ए रिश्ता कबूल नहीं करना ता ए तत्ती लो ते बहना पवेगा। साहब जी कहन लगे, जे अकाल पुरख दा पाना इवी है ता तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ता गुरु अर्जन देव पातशाह आप अकाल पुरख वाहेगुरु नूं नमस्कार करके ते तत्ती लो ते चौकड़ा मार के बह गए। सात संगत बोलो श्री। ते फिर ऐसी अडोल बैठे, एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, ते चंदू पापी अजे भी मन एदा ठरिया नहीं। आख्या रेत तपाओ, रेत तपाई पड़पूंजे नूं सदिया, जो दाने पुंदा सी कि तू अपने कड़छे भर भर के गर्म रेत लैके अर्जुन दे सिर विच पा। सात संगत बोलो श्री। तलों तत्ती तवी अग बल रही है, उत्तों गर्म रेत दे कड़छे पै रहे हैं, ते साहब जी दे जदों भी बुल फुरकदे हैं तां विच्चों एही आवाज आउंदी है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। साईं मियां वीर जदों पता लग्या साहब जी गुरु अर्जन देव लाहौर आए हैं, जदों दर्शन करन आया वेख के हैरान रह गया कि गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोह ते बैठे हैं, उत्ते गर्म रेते पै रहे हैं। ता हाथ जोड़ के बेनती की, गरीब निवाज एक ही पाना है। साहब जी कहन लगे, साई मियां मीर तू पुछिया सी ना ऐसे प्यारे दे दर्शन कराओ के जो कहिंदा होवे तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। ता आवेख लै अगन विच शरीर जल रहा है, तन तप रहा है, मन शांत है हरि नाम से, अंदर परमेश्वर दा नाम वसया, अंदर सेक नहीं पहुंच रहा मन नु, आ शरीर नु क्या दुख देवेगा ए चंदू। साई मियां मीर जिसने हरमंदर साहब दी नी रखी सी, जात दा मुसलमान सी, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह दा प्यारा सी, ते गुरु अर्जन देव महाराज ने उस मुसलमान मियां मीर पासों अमृतसर दे विच जदों हरमंदर साहब साजिया तां नींव हरमंदर साहब दी मियां मीर पासों रखाई कि ए सांझी वालता दा घर है, गुरु नानक दा घर सांझी वालता दा है। मियां मीर ने बेनती की, गरीब निवाज जे आप कोई कला नहीं दिखांदे, शक्ति नहीं दिखांदे तां मैनू हुक्म करो, मैं दिखावां। साहब जी कहन लगे, मियां मीर करना वड्डी गल नहीं है, जरना वड्डी गल है,
शक्ति होंदियां होया जर लैना यह वड्डी गल है। तो उपर वेख गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या हजरत मियां मीर उपर तक जां उपर देखिया तो 33 करोड़ देवी देवता हाथ बन्ने खड़ोते हैं। गरीब निवाज सानू हुक्म कर, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह पाणी विच बैठे हैं ते की कह रहे हैं।

के नाम जपण वालियां दे देवते, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारिया ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रे साए। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन होए,

ज्ञानेश्वर जी महाराज। स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए ते चल पे उना दे

दूर बाहर स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देता। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया भाई ए मेरे नाल जो चले

ज्ञानेश्वर जी महाराज ने भगत जी तुसी भी पानी पियो ते नामदेव जी ने इनकार कर दिता। कहन लगे महाराज मैं केवल अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहुंदा, मैं चाहुंदा हां कि आन वाले समय दे विच जो राही इस राह तो गुजरन ए कुआं उना दी भी प्यास बुझावे। एदे विच जल जो है वह नको नक पर आवे। ज्ञानेश्वर जी ने समझाया बच्चे तू अपनी प्यास बुझा ता जो असी अगे भी राहे पैना है और द्वारका नगरी पहुंचना है। मगर नामदेव इनकारी होके थोड़े दूर जा बैठे ते जा करके

मगन होए, उच्ची उच्ची कहन लग पे, हल्ले यारा हल्ले यारा खुशखबरी। देखो भई मैं तुहानू खुशखबरी सुनांदा हां, मैं नारायण नू देख लिया है। ओ नारायण दी पग बड़ी सोहनी है, बड़ा मिठा बोलदा है, मैं ओनू पहचान लिया है। कहंदे ने अस पत गज पत नरह नरिंद, नामे के स्वामी मीर मुकंद। तू ही मुकंद है, तू ही मेरा स्वामी है, तू ही हाथियां ते घोड़ियां दा मालक है, तू ही जितनी ए मनुखता है उना सारिया दा मालक है। ते उस परमात्मा नू पठान दे रूप विच देखदे हुए बार

अमृत, अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत की कहानी बड़ी लंबी, चार युग होए ने, सत युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा टंग वखरा, अमृत लभण दा टंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच अमर होने वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नु पियाया, वो अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमां दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत।

एक किस्सा तरती तेन से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वड़ा एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदू मिलेगा जदू आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिदी रस्सा चाहिदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी ता सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेषनाग नू रस्सा बनाया शेषनाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पास से दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी उस समुंदर दे विच इस तरह घूमन लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घूमदी देवते उस शेषनाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है उस समुंदर दे विच घूम रहे है बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारियां तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदा ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे जहर तो बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तु

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना। इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे

सुत कहते ने पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख न कहते ने अकाल पुरख तुसा क्या सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नूं देया कहो जिया मैं पंथ

अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती कीती। गुरु साहिबां दी अखां बंद ने, अखां दे सामने एक सूरत आई, लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां, चौड़ी छाती, मत्था चमकदा है, अखां विच नाम दी लाली, बोल फरकदे ने, सोहना दाड़ा, सिर ते दस्तार, हाथ कड़ा, गात्रे कृपान, तेड़ कछहरा। सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पुछदे ने, ऐ सूरत तू कौन है? उस सूरत बोली, मैं खालसा। गुरु साहब जी पुछदे ने, तू कित्थों आई है? ओ सूरत बोली, मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हां, मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो। जो चाहिदा सी ओ मिल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए, पर सोचन लगे, ये सूरत बड़ी सोहनी पर किन्नू दया मसंदा नू, पंडतां नू, साधुआं सन्यासियां नू किन्नू दया ये सूरत? क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नू चंगी तरह साफ करके ले जाने हैं, जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा है ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा सोहना

पंडितां दी प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। ते सहबा ने कहा जिहड़ा मास वाला लंगर छकेगा उहनूं बहुत ही माया मिलेगी, जिहड़ा सादा लंगर छकेगा उहनूं घट माया मिलेगी। मास खाण दे नाल सोने दियां मोहरां ज्यादा मिलनियां ने, ये सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हां ने सादा लंगर खाधा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्हां ने मास वाला लंगर खाधा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं रह सकदा, ओ जुल्म दा

छुट्टी वाले दिन बड़ा पारी इकट्ठ किया। हिंदुस्तान का बादशाह उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब के जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखे है तकरीबन 50,000 के करीब लोगों का इकट्ठ सी। आनंदपुर साहब संगत बैठी, कीर्तन हो रहे, बड़ा आनंद आ रहा। सिंघासन ते गुरु साहब जी विराजमान ने। अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चेहरे का रंग बदली होया, चेहरे ते कठोरता आ गई। म्यान विच कृपान खिंची ते ललकार के कहा, साध संगत मैनू एक सिर की लोड़। पहला तां किसे नूं समझ ही ना आई, जदों दोबारा कहा मैनू एक सिर की लोड़ है, हर पासे सहम छा गया कि ये की हो गया। गुरु साहब जी अपने सिखां दे सिर मंगण लग पए। तीसरी वारी सिर मंगया तां भाई दया राम उठे, हाथ जोड़ के कहन लगे, महाराज मेरा सिर हाजर है। दया राम नूं बाहु फड़िया, तंबू च लै गए, कृपान मारी, सिर वढ़िया। लहू नाल भरी हुई कृपान लैके जदों साहब जी वापस आए, लहू भरी कृपान देख के जिहड़े बैठे सन ओह सारे कंब गए, जिहड़े दूर दूर बैठे सन ओह उठ उठ के भजन।

खाली हो चुका सी ते जड़े दूर दूर भज गए सन भजे भी जा रहे ने ते पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने कोई फड़न दे नहीं आ रहे पर पंजवी तो बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए जड़े बैठे सन प्यारो भी करते पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते बड़ी देर हो गई बैठे उड़ीकते पे ने हुण गुरु साहब जी उस तंबू विचों बाहर निकले कृपान म्यान विच है चेहरे ते हुण रौनक प्यार है वो पंजो जिन्हां दे सिर वटे सन वो ते जिउंदे ने इक वर्गे कपड़े पाए ने गात्रे कृपान सोहणियां दस्तारां हत्थां विच कड़े तेड़ कशहरे हाथ जुड़े ने पंजो जने पिछे पिछे में आ रहे ने जिवें अगे चंद ते पिछे सितारे तुरे आंदे गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह अपने सिंघासन ते बैठ गए सामने सर्वलोह दा बाटा पे है जिद विच पानी पाए विशकार दो तारा खंडा रखे तन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह हाथ दे नाल खंडा हिलान लग पे पानी दे विच ते मुंह दे नाल बाणी पढ़न लग पे अपनी निगाह खंडे ते टिकाई है खंडा पानी विच ला रहे ने मानो बाणी नू खंडे जरिए पानी विच घोल के

चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। ऐ मनुख हृदय रूपी वेड़े विच परमाता परमात्मा रूपी नाम दा जे तू चानना कर लवे, अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना। जे परमात्मा रूपी नाम दा तू हृदय रूपी वेड़े विच चानना कर लवे। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आओ आपा भी रल के इन्हों तुकानों पढ़िए कोई रसना खा ले।

रोज अरदास करदा सी है परमात्मा आओ मेरे हृदय दे थड़े ते बैठो, बेनतियां करदा रहा। एक दिन परमात्मा ने बेनती सुन ली, आ गए, कह लगे खोल भाई बुआ तेरे हृदय दे थड़े ते बैठी है। जां बुआ खोलिया इस हृदय दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई हुई, किधरे ईरखा बैठी है, किधरे क्रोध बैठा है, किधरे होमे, किधरे लोभ, सारा थड़ा भरिया होया। परमात्मा ने पूछा बिठाएगा किथे, थड़ा तो तेरा खाली नहीं, एक वस्तु नू कढ़ेगा तां दूजी नू पाएगा, मैनू बिठाण लई किथे थां, थड़ा ते सारा भर के रखिया होया। कह लगा लै ए तां गल भुली गई सी। आया क्रोध दी बांह फड़ी बाहर छड़ आया, फिर आके काम नू बाहों फड़िया, गलों फड़ के बाहर छड़ आया। जा मुड़ वेख दे क्रोध उथे ही बैठे, मोह दी बांह फड़ दे बाहर छड़ आउंदे, फिर अहंकार नू बाहर छड़न आउंदे, फिर वेख दे मोह उथे ही खड़े। ए विचारा बाहर अंदर सारयां नू कढ़दा रहा, एक एक नू कह लगा निकलो मैं परमात्मा आ गया उनू बिठाने। ओ कह लगे ओ परमात्मा ते तेरा अज आया है, असी तेरे कई जन्मा जन्मा दे साथी, इनू नहीं छड़ सकते। परमात्मा ने आख्या चंगा तू इन्हां नू बाहर कढ़, फिर समा होवेगा आवांगे, आके बैठांगे, तेरा थड़ा खाली नहीं। हुण जदों थड़ा खाली होया फिर आवांगे, इंतजार करके परमात्मा वापस चला गया। हजूर कहते ने हुण समा है तौबा कर इन्हां गुनाहां तों, अते वाहगुरु दे अगे कर अरदास।

आ भाई बंदी छोड़ नू अरदास कीती सी ना पातशाह सी कैद होए पए मेर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी करा अपना पल्ला पकड़ा गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दे पंच दूत मो

साहिब गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, जिथे सारे भगतां नूं सन्मानिया उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करते ने, कहते हे प्रभु ये संसार एक समुंदर है, ते समुंदर विच कहते जदों देवत्या ने समुंदर नूं रिड़किया ते 14 रतन कढ़े। समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहिंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पाणी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर इह संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करदे ने, कहिंदे ने हे मालिक

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तों देवते।